गावन तुदन चेत गुपत लेख जानन लेख लेख तारम बिचारे गावन तुदन ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे।

युग युग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माश पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।

दास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वडभाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतासा है मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रिजको आगे कर धरया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोए न किस की तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया उडे ऊड आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवण खलावै कवण चुगावै मन मह सिमरन करिया।

पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातारा हर त्यावहो संतहो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एक पुरख समाणा एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज वेडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना।

जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह है हर त्यावह है तुद जी से जन युग मैं सुख वासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी

पढ़ है बहु सिमरत स्वास्थ्य जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू नेह चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंढा साई, जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया।

बचावह सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिए सब बैरन कौ आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा।

जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा।

कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन

निकट नह आए है। रक्षा होए ताहे सब काला, दोष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दोष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा।

दुष्ट दोख तेले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां।

आप दयाल मनहु ना विसारेयन साध जना कै संग भव जल तारेयन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारेयन तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे।

जब प्रयोजन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना। आज भी कोई भावना नाल महाराज नु याद करे, महाराज दा नाम ले। कहंदे ने जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट कोई संकट नहीं आउंदा। जोन जूनिया विच नहीं जांदे, गर्भ ना आयो, वार वार गर्भ दा दुख नहीं मिलदा। ऐसी बख्शिश है महाराज दे नाम अंदर, जिन्होंने पाणा की होंदा है, परतक निरंकार दा आसरा लैके करके विखाया है। कहनी ते कथनी दे मालक, इसे करके शहीदां दे सिरताज बन गए। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे दादा जी बन गए, और फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पिता जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, उन्हां दियां बख्शिशां मेरी पीरी दी, और फिर चार पोतरे, फिर पुत्र, सिख पंथ दी चढ़दी कला वास्ते ऐसे शहीदी दे जाम पीते जीना सिखाया ते मरना भी सिखाया। गुरु अर्जन देव जी महाराज नू हमेशा ही नमस्कार है। सचे पातशाह जी दी याद हमेशा हिरदे विच वसा के रखिए। महाराज कहंदे ने मैं तत्ती तवी ते बह के भी शुक्र मनाया, तत्ती तवी ते बह के भी खुशियां दे गीत गाए, भाणा मन्या, पर अज दा गुरसिख लखां सुख लैके भी परेशान है। वो तत्ती तवी ते भी खिड़ खिड़ा के बैठे, पर असी एसी रूम विच भी तपी जांदे। महाराज कह रहे ने आत्मा दा भोजन रज रज के करो। शरीर दा भोजन वखरा है, रूह दा भोजन वखरा है। शरीर दे पदार्थ जिन्ने मर्जी चक लो, जे अंदर टिका बनाउणा है ना, ते फिर महाराज दा नाम जपिए। धन गुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी दी सिख्या सदा हिरदे विच वसाइए जी। भुल चुक दी खिमा, अगला प्रोग्राम भाई साहब भाई सिकंदर सिंह जी गुरमत विचारां नाल झोलियां भरनगे। असीस देव, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

झूठ न चंद सूरज की भेदी, झूठ न अन्नी झूठ न नाई, झूठ न मी वर है सब थाई, झूठ न धरती झूठ ना पानी।

0: सिमरन
1: प्रभ कह सिमरन नाही जम त्रासा
0: सिमरन पूरन आसा
1: प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए प्रभ जी बसे साध की रसना प्रभ को सिमरह से तनवंते
2: सिमरह से पतवंते
1: प्रभ को

कार्य पूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन ने चल आसन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सिमरह से जान जिनको प्रभु मया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन

0: नीवलीकरम कर बहु आसन निमक निमक शरीर कटावे
1: जावे
0: हर के नाम संसार कछ नाहि
1: नाम जपत
0: मन कामना तिरदे छूटे
1: धर्म मान मंदे उठे।

0: प्रतित भव बहुत शरण जम का पहु व्या पै
1: परमजतन कर तृष्णा त्रापै
0: एक अनेक अगनि बुझै
1: बोलो पावत ज्ञान इसी जय
0: नाहि उपया
1: मोहि व्यापै माया जा
0: अवर करतु सगले जम दाने
1: गोविंद भजन बिनति नहीं मानै
0: का नाम जप दुख जाए
1: नानक बोले सहज सुभाए
0: चार पद

0: निर्जन को प्रभु दरस प्यासा सगल पुरख में पुरख प्रदान आपस को जो जाने नीचा
1: सत्य ऊंचा
0: जहाँ का मन हो सगल किरीना मन अपने ते बुरा मिटाना दुख दुख जन समेता निर्धन को तन तेरो नाओ
1: को ना
0: निमाने को प्रभु तेरो मान

0: ज्ञान कवर न जान सकोए।
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जब निर्मल कर,
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया,
0: सार संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा,
1: सगल वाणी में अमृत वाणी,
0: हर को जस सुन रस।

0: अष्टपदी
1: रमैया के गुंचेत परानी
2: कवन मूर्ते कौन दृष्टानी
1: किंतु सात सवार सिगारिया
2: घर बगल में जिन्हें उबारिया
1: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
2: पार्यो बन भोजन सुख सुरूर
1: बिर्द पया ऊपर साख सहन
2: मुख प्याओ बैठ को दैन
1: ए निर्गुण गुण कछु न बूझ जाए
2: बख्श लो तो नानक सीजे
1: जे प्रसाद तार ऊपर सुख बसे
2: सुत प्राप्त नील बनता संघर्ष
1: जे प्रसाद पीवे शीतल जला
2: सुखदायी पोन पाप मुल्ला
1: जे प्रसाद भोगे सब रसा
2: सगल समग्री संसार दशा
1: तीने हस्त पाव करन नेत्र रसना
2: जिसे त्याग और संरचना
1: ऐसे दोख मूड अंध व्यापे
2: नानक काढ़ लेव प्रभु आपे
1: आद अंत जो रखन हार
2: ईश्वर प्रीत न करे गौर
1: जाकी सेवा नव निध पावे
2: मन नहीं लावे
1: जो ठाकुर सद सदा हजूरे
2: ठाकुर अंदा जान दूरे
1: जाकी टहल पावे दरगे मान
2: सह विसारे मुद जान
1: सदा सदा ए पूलन हार
2: नानक राखन हार अपार
1: रतन त्याग कौडी संग्रचे
2: हा छोड़ छूट समचे
1: जो छड़ ना सो स्थिर कर माने
2: जो हो दूर पराने
1: छोड़ जाए तिसका श्रम करे
2: संसार इस पर हरे
1: चंदन लेप उतारे।

0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे,
1: सरगा ले हो पुण्य आवे,
0: कहा बुझारत बुझे डोरा,
1: इससे ये तो समझे कोरा,
0: कहा बिसन पद गावे गुंग,
1: यतन करे तो भी सुर पंग,
0: कह पिंगुल पर्वत पर पवन,
1: नहीं हो तो आव सवन,
0: करतात करुणा में दीन बेंती करे,
1: नानक मुनि कृपा करे,
0: सांग सहाई सो आवे न चीत,
1: जो बैराइता सुप्रीत,
0: बलुआ के ग्रह पीतर बसे,
1: अनंत केल मार
0: कर माने मने प्रतीत,
1: आलावे मुड़े चीत,
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह,
1: झूठ विकार मालो करो,
0: याहू जुगत बिहाने कई जन्म,
1: नानक राम देव अपन कर कर्म,
0: तू ठाकुर तुम पैरदास,
1: जियो पिंड सब तेरी रास,
0: मात पिता हम बारिक तेरे,
1: पूरी कृपा में सुख कनेरे,
0: कोई न जाने तुमरा अंत,
1: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत,
0: लगल समग्री तुमरे सूत्र

प्रसाद आ भूखन पहरी जय प्रसाद असौ हस्त असवारी हे प्रसाद बाग मिलक तना जिन तेरी मान बनत बनाई सह त्याय।

0: ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना
1: आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
1: ब्रह्म ज्ञानी से कछ बुरा न पाया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानु ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह
1: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा
0: ब्रह्म ज्ञानी के ना ही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी लेता उत्पन्ना
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो पला
1: ब्रह्म ज्ञानी सो प्रतिफला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रसंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अंग त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी का असल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी का सदा देश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाये अखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना
1: ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जिए।

0: इच्छा नहीं बाछे
1: भगत कीर्तन संग राचे
0: अंतर अंतर सिमरन गोपाल
1: कृपाल
0: आप दृढ़ अवर नाम जपावे
1: को वैष्णो प्रणम पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: दुष्ट
0: मनते दिन सह सगला परम
1: सगल
0: सत्संग पापा मल खोवे
1: भगवती की मत होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत हर कै चरण हृदय बसावे
1: मन कैसा भगवती भगवंत को पावे
0: ओ पंडित जो मन पर बोध
1: राम नाम आत्मा में सोधे
0: राम नाम सारस पीवे
1: पंडित के उपदेश जगी

0: कोट सिद्ध जति जोगी
1: कोट राजस भोगी
0: कोट पंखी सर्प उपाय
1: कोट पाथर दिप निजाय
0: कोट पवन पानी बै संतर
1: कोट देव मंडल
0: कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र
1: कोट देवता इंद्र
0: सगल समग्री अपने सूत धार

0: समझे
1: आपे रचिया सबके साथ
0: तीनों आपन विस्तार
1: साफ कुछ कहो करने हार
0: उससे पिन कहो कुछ हो उससे पिन कहो कुछ होए
1: अंतर एक कैसोए
0: अपने चलत आप करने हार
1: और तकरे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नान कीमत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभ स्वामी
1: गुरु प्रसाद की ने वखियानी
0: सच सच सच सब कीना
1: कोट मुझे किने मिले चीना
0: पला पला पला तेरा रूप
1: असुंदर अपार रूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी।

दुखन सुख सब जाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के हत को रखे ना कोई संत कृपा

0: चिन्मंतन
1: के सेवक सकल उदाहरण
0: आपके सेवक दुख विसार
1: आपे मेल लय कृपाल
0: का सब जप हेने
1: सेवा सुई लागे
0: कृपा करे वट पाके
1: राम जप

0: नेत्रों पे एक दर्श सुख होए,
1: मन विषय साध होए,
0: भगत भगत जना के मन तन रंग,
1: बिरला को पावे संग,
0: एक बस दीजे करमया,
1: गुरु प्रसाद नाम जपले,
0: ताकि उपमा कहीं न जाए,
1: नानक रहा सब समाए,
0: प्रभु संत दीन दयाल,
1: भगत वचन सदा कृपाल,
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
1: सर्व कटा करत प्रतपाल,
0: आद पुरप कारण करतार,
1: भगत जना के प्राण आधार,
0: जो जो जपे सो होए पुनी,
1: भगत पाए लावे मन हीत,
0: निर्गुण याद नीच आ जान,
1: नानक तुम्हरी शरण पुरख भगवान,
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए,
1: एक निमक हर के गुण गाए,
0: अनक राज भोग बढ़ियाई,
1: हर के नाम की कथा मन पाई,
0: बहु भोजन कापर संगीत,
1: रसना जपी हर अर्णीत,
0: बलि सो करनी शोभा तनवंत।

0: नानक उदय तिन कैसा थे,
1: सरन जोग सुनसरनी आए,
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए,
1: मिट गए बैर पए सब रे,
0: अमृत नाम साथ मिले,
1: प्रसन्न पए गुरुदेव,
0: पूर्ण हो सेवक की सेव,
1: हाल जंजाल बिकार ते रहते,
0: राम नाम सुंदर सुना कहते,
1: प्रसाद दया प्रभ तारी,
0: नानक जी के हमारी
1: उत्सत करो संत मीर,
0: सावधाने कागर चीर,
1: रुक्मिणी सहज गोविंद गुण नाम।

सगल समग्री तुम रह सुतर तुमते हो सो तुमरे गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक नहीं ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस दिठे सब्द हो जाए तेग बहादुर सिमरै करनो निध्यावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियों दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान रखे बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चाली मुकतियां अठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई देग वाही देग के अणडिठ कीता तना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया न चराए गुरुद्वारा दे सेवा लिये कुर्बानियां कीतिया धर्म निहारिया सिखी केसा स्वस्थ संघ निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारा दा ध्यान रखे बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जा खालसा जी साहिब तहत हर शरिया जिगते फतेह ब्रत की पाए पंथ की जीत श्री साहिब जी साहे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहे दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदार नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीमा मत उची मत पत का रखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारा गुरुधामा जिन्हों तो पंथ नु छोड़िया गया खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नु बख्शो इन माण्यो के माण नताण्यो के ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहेगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुत भावे ता आने रास महाराज जी आप जी दे चरणा च अरदास बेनती आप जी दी महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दियां विचारां उपरंत तन तन साहिब श्री गुरु अर्जुन साहब महाराज जी शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज आप जी दी शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित सिख गुरद्वारा सनहजे दियां समूह संगतां वल्लों उपराला कीता गया शामा दे दीवान विच महाराज जी सुखमणी साहब जी दे संगती रूप विच सिख संगतां ने जाप कीते कृपा करनी महाराज जी बाणी पढ़दियां कीर्तन करदियां विचारां करदियां सुखमणी साहब जी दे जाप करदियां महाराज जी होईआं बेअंत बेअंत भुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उद्दम बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईआं संगतां दे हिरदयां ते वसाउणा आईआं संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभनां दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नु दरो करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी बेअंत संगतां दूर दुराडे पिछे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदे आप जी दा धन्नवाद करदे बेअंत वाहिगुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादारा सिंघां वास्ते ऑनलाइन भेटां कीती महाराज जी सारी संगत दी हाजरी दर प्रवान करने सभना की माया सफली करनी कृत कमाईया बरकत पाया श्रद्धा भावनावान संपूर्ण करनिया जी आप जी दर घर के सेवक भाई बलराज सिंह गिल समूह परिवार की सेहत तंदुरुस्ती चढ़ती कला की अरदास बेनती करद गुरु घर वास्ते $200 माया भेटा करद कृपा करनी सेवक परिवार की भेटा दर प्रवान करनी देर उगता तंदुरुस्तियां प्रदान करनिया जीओ
ਭਾਈ ਨੀਰੂ ਮੁੰਜਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬੇਟੀ ਅਵਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪਿਰਾਤ ਰੱਖਣਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਰਾਧਕਾ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਸੁਣਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ।

आप तरण तारण हर निध दुख न सके ब्या। साधु संग भजो गोपाल आन संजम किछ न सूझे ए जतन काट कलकाल रहाओ आ।

सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला से सिमर जिन आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन कृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किश सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूरन आशा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से धनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरै से जन प्रवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरै से बेमोहताजी प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा बेनासी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभ को सिमरै से पारुपकारी प्रभ को सिमरै तिन साध बलहारी प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे संत किरपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरै से जन जिन को प्रभ मया नानक तिन जन सरणी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन पय सिद जति दाते हर सिमरन नीच चहो कुंत जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जह मात पिता सोत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई जय महापयान दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरा चलै जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कन्हेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंध न परै हर का नाम जपत निस तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत अघावै जिह मार्ग एहो जात अकेला तह हर नाम संग होत सोहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तै पार पराही अनक बिघन जय आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै अनिक जोन जनमै मर जाम नाम जपत पावै बिसराम हौ मैला मल कबू न धोवै हर का नाम कूट पाप खोवै ऐसा नाम जपहु मन रंग नानक पाइय साध कै संग जिह मार्ग के गने जाहि न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जेह पैंडै महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महापयान तपत बहु काम तय हर के नाम की तुम ऊपर शाम जह त्रिखा मन तुझ आकर्ष है तह नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बबेकै हर का नाम जन को मुकत जुगत हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडयाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कश नाम

हम सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

के उजले पेती छुट्टी डाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाह दसवीं छपै छंत्व प्रसाद। चकर चेहने अर वर्ण जाते अर पात नहन जेहे। रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे। अचल मूरत अनुभव प्रकाश समितोज कही जय। कोट इंद्र इंद्रान साहि साहान गनिजय। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत। त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म ना वर्णत सुमत। भुजंग प्रिया छंद नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग टाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग लोके नमस्तंग शोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग थापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्तजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अपेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वकापे नमो सर्वतापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तंग अपेव नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबन मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्तदयाले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सत्तबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनन्ते नमस्तंग महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी चंत्व प्रसाद। अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अदेह है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नृसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अचूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिरेक है भुजंग प्रिया छंद
नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति बेपूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वयं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वयं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वयं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो वस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वयं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेतेवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसाम नमो फूप फूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानं सर्वं परनाशी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी चांद चले हैं तले हैं अपीत हैं अपीक हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तुंग निर्नाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहसाहे नमो महाबाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा रिद सिद्धं निवासी चारपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंत्व प्रसाद आदरूपन आदमूरत जोन पुरख पारु सर्व मांत्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराजही अवतूत रूप रसालु नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजौन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बहीन फेकत ताहू न जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जा नहीं जे बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानी कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जापी जे जाप आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जी थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्वरचियो सोयम पव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त
अकाल पुरख देश धर्म धाम सुभरम रहत अभूत लख अपेश अंग राग न रंग जाक है जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी का नुस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंग ही न भंग नात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानही ये रूप रंग अरेख परम वेद प्राण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मत पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाश आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पानु देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आबा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्युत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य तर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ्य चात्री छन्त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रया छंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रय न मित्रय न परमंग न पित्रय न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्रय न मित्रय परे है पवित्र प्रथिशय अदिशय अदृश्य कृशय भगवती छन्त्व प्रसाद कथते के आचिज देशय के आज पिशय के आ गंज कर्मय के आ पंज परमय के आ पिज लुकय के आदित सुखय के अवतूत वर्ण के विभूत करने के राजं प्रवाह के धर्मं तुजा है के असुख वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है के छत्रं क्षत्रिय है के वर्मं स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद देव है के आप अपेव है के चित्रं वहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पावक बेअब है के गैबुल गैब है के अफुल गुना है के साहन साह के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र ताप्य है के सर्वत्र पान्य है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फहिम है के अकल आलाम है के साहिब कलाम है के हुस्नल वजू है तो मामूल रजू है हमीसल सलाम सलीखत मुदाम गनीमुल शिकस्त गरीबुल परस्त बिलंदुल मकान जमीनुल जमान तमीजुल तमाम रुजुअल निदान हरीफुल अजीम रजायक यकीन अनिकल तरंग है अभेद है अपंग है
अजीज निवाज हैं, गनी मुल्क राज हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुजुक्त सुदा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तु पराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं,

हैं, प्रजुगत अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विपुगत प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रजुगत अनूप हैं, चाचरी चंद अभंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अवय हैं, अपूत हैं, अतूत हैं, अनास हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निश्चिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलीख हैं, अपीख हैं, अटा हैं, अगाह हैं, अनिल अटा हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छन्त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छन्त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं शरीक है अमितो अमित है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छन्त्व प्रसाद इजाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल के राज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बहसुल निवास है के सर्वल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है आदेशुल अलीख है हमेशुल अपीख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मद पार छन्त्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपवन आस मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अनछेज अंग असन अपंग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विश अपंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट पंडार अंडट अपारु आडीठ धर्मु अतटीठ कर्मु अनवरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छन्त्व प्रसाद करुणालय है अरकाल्य है कलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है थप्पा थप है कृता कृत्य अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वंपर है करुणालय है निर्णायक है सर्वपायक है

रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस की जस है, भुजंग प्रया छंद। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसात रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूप।

अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम गाह टाह अनाथि प्रमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे सुमस्तुल परनासे अगंजुल अनामे सुमस्तुल निवासे नरकामंग बेपूते सुमस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा सुमस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग।

नामान्यु सिमृत शास्त्र वेद सबै बहुपेद कह हम एक न जान्यु श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहु सब तो हे बकान्यु दोहरा

जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे, बिणवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे, बिणवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तू

काहिनानि किकार करदम मम ईचिनी अहवाल बद बख्त हम चू बखील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बगोए।

सतनाम श्री वाहे गुरु जी दंडौत वंदनियन के बाद सर्व कला समरथ ढोलन ते राखो प्रभु

मत को जाने जाए अघै पाए सी जे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाम आप वरताए सी।

रंग विस्माद नागे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगह प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाहा विस्माद उज्ज

नानक जिन करतै कारण किया सो जानै करतार। पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिलै सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जम्मिया हौ विच मुआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सचियार कूड़ियार हौ विच पाप पुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसै हौ विच रोवै हौ विच भरियै हौ विच धोवै हौ विच जाति जिन सी खोवै हौ विच मूरख हौ विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बूझै तां दर सूझै ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझै।

कर सुकृत धर्म कमाया, पुनि दुनिया तोड़े बंदना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला, नित देव है चढ़ है सुवाया।

अंडर जेरज उत्पुजा खाणी सेत जाहा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै सुमाले सब नाहा जिन करतै करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दीबाण अबग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग महला पहला लख निक्कियां चंगियाईया लख पुन्ना परवान लख तप ऊपर तीर्था लख तप ऊपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सूरतन संग्राम रण मह छुटै प्राण लख सुरती।

जन्म गवाया विच दुनिया का ही आया। श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आर जा, पढ़ी है जेते सास। नानक लिख है एक गल और हम मैं चखना चाक। महला पहला। लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया, बहु तीर्थ भविया ते तो लविया, बहु भेख किया देही दुख दिया, साहो वे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरे अहनिस कहरे, मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग उपेताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंध है पत गवाई, बिन नावे किछ थाए न पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंधे ते नहीं केवल, हौ मैं शब्द जलाए। पौड़ी।

अंग किया, कल मैं वेद अथर्वण हुआ, नाउ खुदाई अल्लाह भया, नील बस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद हुए सचियार, पढ़े गुणे तिन चार विचार, पाओ भगत करनी चसदाए, तो नानक मुखंतर पाए। पौड़ी सच।

इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रिया सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया। श्लोक महला पहला सिमल।

पड़े कतेबा, संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा, नाम ले जाहि तरंदा। महानला पहला, मानस खाने करह निवाज, छुरी वगैरह

महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर पूरन गुरु मर्यादा अनुसार बच्चा गगनदीप सिंह सनोप सरदार सुरजीत सिंह जी, बीबी शशि सैनी जी और बच्ची नीलम कौर गरेवाल, डॉटर ऑफ गुरजीत सिंह गरेवाल, बीबी बलजिंदर कौर गरेवाल, दोवें परिवारां नूं लख लख लख लख वधाइयां। पति ते पत्नी दा रूप महाराज दी हजूरी विच बच्चियां ने लै लिया है, तुसी असीस देना। जीवन दे कारोबार, जिंदगी दे कारोबार महाराज दे नाम नाल, नितनेम नाल ए सारे परिवार करन, बच्चे करन। वधाइयां दा शब्द गावांगे सारियां संगतां नूं, भैणां नूं, सब नूं।

आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी गगन दीप सिंह सपुत्र सरदार सुरजीत सिंह बीबी शशि सैनी अते बच्ची नीलम कौर गरेवाल सुपुत्री सरदार गुरजीत सिंह बीबी बलजिंदर कौर गरेवाल समूह परिवार ने सच्चे पातशाह जी अज हाजरियां भरिया इस सुभाग जोड़ी ने आप जी के पावन पवित्र दरबार अंदर गुर मर्यादा अनुसार आनंद कार्ज करवाए गरीब नवाज आप जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर मर्यादा नु निभाउंदिया बेअंत भुल्ला हो गईया आप जी ने खिमा करनिया अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना रहमत करनी सुभाग जोड़ी दे सिर ते सदा मेहरा भरिया हथ रखना गृहस्थ धर्म दियां सारियां खुशियां झोली विच पाउणियां।

प्यार दी दात बख्शिश करके नवाजना, सदा चढ़दियां कला बख्शिश करनिया, गुरसिखी वाला जीवन बख्शिश करना। सतगुरु जीओ इस खुशी ते मौके सुभाग जोड़ी वालों आप जिया नू सुंदर पोशाके भेट किते गए हन। आप जिया ने अंगीकार करने सेवकां दे लोक परलोक पड़दे कजने, बख्शिश कीतियां कमाइयां विचों कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है। दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते, सतगुरु जी बेअंत संगतां ने आप जी के दर घर दियां हाजरियां भरियां, तिल फुल भेटा माया आप जी के चरणा विच अर्पण कीती। कृपा करनी समूह संगत दी हाजरी माया सफली करनी, सबना नू दरों घरों चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजना। ऐस वक्त गरीब नवाजी करदे होए पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी, हुक्म ते चलन दी समर्था बख्शिश करो। अखरवाद घाट भुल चुक।

मन बिसुरा भगत जना के मन बिसुरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नागमनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्हां कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस घर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे।